0: ऐसे जी दारी फुल गातो सवाल लेंगा हानो लाता इंगे
1: रब्बा
0: दारी फुल आरे में घुरी हाँ इम्मेंगे दारी फुल क्या मम्मे क्या इम्मेंगे रब्बा की को बा
1: अल्लाह ताला
0: अरे रंगल दारी फुल के रसूल की
1: मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
0: दारी फुल के दीन की
1: इस्लाम दीन
0: अरे रंगल
1: अम्मा वरगिने दोसे जी दो हमने कुराता
0: वरगिने दोसे जे हे नमस दारी फुल हंदाम वे से भूरे हंदाम बहटम वे स्वानेंगे मुस्लिमो मि तीन सवाल का जवाब अब दुवेस हंदाम बाटम वाणेंगे
1: मम्मा
0: मम्मा
1: नुकुरा दोस करो सब मनुकुरा का विषय दंगा फूटते
0: हाँ एक हम दरिफ़ हम हंदा नुकुर दी हुरी तो
1: लब्बा मम्मा हंदा बेटो बाला हमारी
0: दरिफ़ ला दें भी कोई गाड़ो हच्छेंगे मम्मा कुरीन दरिफ़ बुनी मन ओज़ेर के फानो दिए पुरी हाँ कम खामे तो बिसना मुन्ने तो अजायब फुलवे हैरान वे बढ़ाए गए हिप्पुलो विदालवे बस फुलोगे मानस मम्मा की याद ही फिमेन दो
1: रब्बा
0: ये हिंदू मैं अल्लाह रुझेर के फानों के अरिहा अजाजील नुवता मारु के मलाई कता फुनुवी
1: ठीक है मम्मा रुझेर के फानों का द मारु के मलाई कता है
0: आ दरिफ्लो आदि साथी का आहार वंदिं इकले के फानो मारु गन्ना वाफा बेब वेवी कीने मिवी
1: ससे कारों दका इकले फानो मरुगन्ना वाफ बेवी
0: इकले के फानो अवहार फुला ओशो वे बढ़ाया गन्ने वे थांग हम ए ओन्ने वे कुता ये फाव अलुं दीरु वेवी इंगे
1: कौन मेरे को बम्मा
0: नरफ्ला सती कहार फाहु गेन्नो
1: अड़वाचे
0: अल बकरा सूरत गे दुई सत फंसास नुवा बनाया तुके एकं हिंगा दिए गे वर साफ को अंग वाफा वे अल्लाह ताला वही कुरा वाफा बस फुल गे मानग निवणी तें अलुं एना दिरुवा हयाता फुनु विए इफा देनन तो
1: अब्बा
0: सती कहार गे तेरेगा बानी इसराइल गे तेरें एता जीले गे मीहु मारवे गोसि आदि एता बयक वानी उफम वेसवेफा एहन तवानी सती कहार गे तेरेगा किहा बयक उफम वानी किहा बयक मारवानी तरिफला
1: अब्बा
0: रशु गे हालत एक गोतु अनेक गोत वानी बदल वेफा इमारा तका एहनि हिं असर तवेस पुरिया मुलिन तफात इगे दरिफला
1: अब्बा अल्लाह ताला के कुरान में तो कम न कम बाकी जैसे ही हम फैलना।
0: बारा रंगलो दारिफ्ला, अच्छा दारिफ्लो, मेरे मम्मे कदे मिवा का इतुरा का क्या नो दे वेने मिहारी और नोए जहिए।
1: लब्बा।
0: इंगे माँ बोटा विस्लास वेजे इंगे दारिफ्लो।
1: अच्छा मारु कोली मम्मा आग उठता ने कदे नो बोने।
0: हाँ माँ बोटा विस्लास वेजे देंग अवहंग हिंगा निदम उगे कुरिं की आसूरे तका कुरुसिया सिखुर किया के अवहंग निदम उने
1: माँ
0: इंशाल्लाह माँ हमारे मम्मा दरिफुला मिवाह क्या गाने बैक किया देने ये
1: लब्बा मम्मा आजा मेरे वाला गाड़ो आई तुमने
0: आह देंग आधे अब हम मम्मा गात बाम कोलेंग आँखा लगें देंग मेरे निदाने माँ बुड़ा रोग आवेफ्ती इधर दरिफुला
1: लब्बा
0: आह अच्छा दरिफुला वा फाशा देंगे
1: लब्बा अच्छा मैं फाशी दावा लसनो को
0: मारा रंगालो कुछ